0: तरह से ये क्रांति है जिसको डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है, और हर क्षेत्र में अगर आप देखिए एक और बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जेम करके, जो जब स्टार्ट हुआ जिसमें जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट किया गया और 400 करोड़ से शुरू हुआ और आज 5 लाख करोड़ का छोटे एमएसएमईज या उद्यमी उनको 9 लाख करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से। तो एमएसएमई भारत की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, और उनको अगर ऐसे प्रोक्योरमेंट्स में जो बिचौलिए या जो पेमेंट में दिक्कत या डिले होता था उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जेम के माध्यम से बहुत ही सजग रूप से एड्रेस किया गया। ना सिर्फ एड्रेस किया गया, उसके रिजल्ट्स दिए गए और एमएसएमईज को मजबूत किया गया। इस यही वजह है कि हमारे एमएसएमईज अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के टॉप 3 नेशंस में हैं, क्योंकि ये ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस हुआ है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सक्सेस है, ना सिर्फ भारत के लिए सारे डेवलपिंग नेशंस के लिए, क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी फॉर गुड फॉर एम्पावरिंग कॉमन सिटीजन्स इंक्लूडिंग एमएसएमईज हमारे फार्मर्स और स्टार्टअप्स, ये अद्भुत है और इसका रोजमर्रा में भी काफी इफेक्ट है। चाहे आप मतलब कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और जो बाकी इकोसिस्टम है जैसे मेड इन इंडिया या हमारे स्टार्टअप की इनोवेशंस हो रही है उनको भी मौका मिल रहा है सरकारी प्रोक्योरमेंट्स में अपने सॉल्यूशंस लगाने के लिए, चाहे वो हमारे फार्म्स में स्मार्ट फार्म्स हो सेंसर लग रहे हो या हमारे स्टार्टअप अंतरिक्ष में अपना स्पेस शटल भेज रहे हो। तो ये एक उपलब्धि है और ये एक इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री जी के विजन का।
1: श्रोताओं, जन सेवा से देश सेवा इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत से तकनीक से परिवर्तन की यात्रा, और इन दिनों इस विशेष श्रृंखला में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों का जो एक परिवर्तनकारी नेतृत्व रहा है भारत को जिसने नई दिशा दिखाई है उस पर अलग अलग संस्करणों में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, एक और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मैं प्रसून जी, वो है डिजी लॉकर, जो पेपरलेस गवर्नेंस है उसकी दिशा में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब करोड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं डिजी लॉकर पर। हम पहले दफ्तरों में कार्यालयों में जो कई जटिलताएं थी अपने पेपर्स ले जाने पड़ते थे, तो एक पेपरलेस व्यवस्था इस समाधान ने दी। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो इससे कैसे एक तो पारदर्शिता के तौर पर डिजी लॉकर ने काम किया है कि जो एक सत्यापित डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे डिजी लॉकर में रहते हैं, और साथ ही नागरिकों की सुविधा को इसने और कैसे बढ़ाया है?
0: जैसे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग पे फोकस किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डिजी लॉकर और आधार उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तकरीबन 70 करोड़ के आसपास डिजी लॉकर है, चाहे आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है या एक मोबाइल का सिम लेना है, आप डिजिटली पहले कई हफ्ते या महीने लगते थे, आप कुछ सेकेंड्स में आप ये कर सकते हो और आपको कोई फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी ले जानी नहीं है। इवन अगर आप देखिए जो हमारे एयरपोर्ट्स में जब हम ट्रांजेक्ट करते हैं तो वहां पे आपका फेशियल रिकॉग्निशन से आप पूरा जो भी सिक्योरिटी गेट्स हैं उसको पास कर सकते हैं कुछ मिनटों में, जो पहले घंटों में होता था वो मिनटों में हो रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री का विजन था भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करना गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक जीता जाता सक्सेसफुल उदाहरण है डिजी लॉकर, आधार और इससे रिलेटेड जो सेवाएं हैं। ना सिर्फ भारत सरकार उस पे सेवाएं दे रही है, जो हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड है या इनोवेशन वर्ल्ड है वो भी इस पे अपने अपने सॉल्यूशंस बना के दे रहे हैं। चाहे वो मान लीजिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सत्यापन करना हो, उनको अब बैंक नहीं जाना है तो उससे काफी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो विड्रॉल की हो, चाहे उनकी सब्सिडीज या उनको जो महीने का जो भी पैसा मिलता है वो मिलना हो। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने बनाया है जिसपे वो खुद भी सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉमन गुड जो भारतीय सरकार ने बनाया है वो एक सराहनीय कदम है। किसी एक कंपनी या किसी कुछ मुट्ठी भर लोगों की प्रॉफिट के लिए ये नहीं बनाया गया है।
1: बिल्कुल, अभी शंकर जी प्रसून जी बात कर रहे थे जेम पोर्टल की, सरकारी खरीद में जो दशकों से एक अधिकार एक चला आ रहा था भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी समस्या थी, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने जो जेम पोर्टल लॉन्च किया, अब उसमें हम देखते हैं कि न केवल केवल छोटे उद्योगों को नया एक रास्ता मिल रहा है, सरकारी खरीद में अब उन उद्योगों के उत्पादों को खरीदा जा रहा है, बल्कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए हुए सामान भी अब सरकारी दफ्तरों में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो व्यापार की जो सुगमता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उसको कैसे इस तरह के इनिशिएटिव्स ने बढ़ाया है, और क्योंकि ये एक डिजिटल पहल है, इससे जो हम ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की जो बात करते हैं, उससे कैसे इससे मदद मिली है?
2: बहुत बड़ा चेंज जो हुआ है, एक बदलाव जो हमारे सिस्टम में हुआ है, वो हमने भागीदारी स्थापित की। हम लोग जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं एमएसएमई के, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा, तो उसमें क्या किया है हमने, हमने भागीदारी स्थापित की है। हमने जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पारदर्शिता के लिए डिजिटल लाया, लेकिन उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की जितने अफसर हैं वो सारे देश में है। अब कोई भी किसी भी दूर दराज एरिया से, इवन प्रधानमंत्री के दफ्तर में जो थर्मस फ्लास्क है वो पौंडीचेरी से ले आया है, कोई महिला बनाती है और वो सप्लाई। तो जो सुविधाएं हैं वो एक बात है, लेकिन जिस तरह से भागीदारी हमने लाई है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम में, कोई भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में, जैसे कोविड के टाइम पे हमने कोई प्रॉब्लम जो लॉकडाउन और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उसको ओपन किया था। अब आप कोई भी बात हो आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। ये जो भागीदारी लाई है जो बिजनेस में, जैसे आपको किसी के साथ, आप घर पे नहीं है लेकिन आपके घर में कोई सामान खरीदने गया हो, तो आप व्हाट्सएप, जो टेलीकॉम की फैसिलिटी है, जो आधार की फैसिलिटी है, जो यूपीआई की फैसिलिटी है, उससे आप कंटिन्यूस। और जितने लोग आजकल डिजिटली अपना सामान बेच रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, अब आमतौर पे हमारे जीवन में ऐसे वो शामिल हो गया है कि हम लोग इसको कोई ऐसा, हम लोग इससे अचरज नहीं होता है हमको, लेकिन हम लोग कितनी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर, कितनी चीजें, हमारा प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, ड्राइवर होता है, जो भी होता है, उसके साथ हमारा जो संपर्क है, जो सामाजिक संपर्क एक तरफ है, लेकिन जो व्यवहारिक संपर्क, जो बिजनेस रिलेशन है, वो टेक्निकल, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावर होता है। जिस तरह से एकदम लास्ट माइल जो, या गांधी जी कहते थे कि द लास्ट पर्सन इन द क्यू, जो एकदम छोटे से छोटा आदमी उतना ही सशक्त है जितना अमीर से अमीर है तकनीकी के कारण।
1: प्रसून जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही जिक्र किया था स्वागत पहल का, 2003 में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की थी, जैसा कि आपने भी बताया संयुक्त राष्ट्र में बाद में उसे सम्मानित भी किया गया था उस पहल को। इसी मॉडल को अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक इसका परिष्कृत रूप हमारे सामने आता है सीपी ग्राम्स नाम से, इस तंत्र से जो तकनीकी के माध्यम से देखा जा रहा है कि जो जनता की समस्याएं हैं उसके त्वरित समाधान करने की एक सरकार की सोच है, और राज्यों के स्तर पर भी अपनी अपनी पहल की जा रही है। तो कैसे ये एक जो तंत्र बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा जनता से सीधे जुड़ने का, उनके ग्रीवांस को के समाधान का, कितना बड़ा ये एक डिजिटल माध्यम से सफल हो पाया है, कितना असरदार है ये?
0: बहुत ज्यादा असरदार है, और इसका जो सामान्य हम माई गॉव के रूप में जानते हैं उसमें तकरीबन 6 करोड़ के आसपास सुझाव आते हैं, और अब वो शिकायतों से सुझाव में परिवर्तित हो गए हैं, और तकरीबन 8 लाख शिकायतें और उनमें से 99% का शिकायतों का समाधान हुआ। दूसरा डिजिटल माध्यम अगर आप देखिए, आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मन की बात करके, जहां पे प्रधानमंत्री डायरेक्ट देशवासियों से मिलते हैं, देश में, विदेश में भारत ने क्या किया उसका लेखा जोखा, और इवन छोटी से छोटी बात कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, कुछ नई पहल, उसके बारे में बातचीत करते हैं, और उसका फिर डिजिटल माध्यम से लोग उसमें सुझाव या अपना जो रिएक्शन है वो प्रधानमंत्री जी को भेजते हैं। तो ये एक डायरेक्ट वार्तालाप का जो इकोसिस्टम तकनीक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने डेवलप किया है वो बहुत सराहनीय है, और इससे अगर आप देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा आकाशवाणी की जो श्रोताएं हैं और या एंगेजमेंट है कितना ज्यादा बढ़ा।

0: है और इसको एक तरह से एम्पावरमेंट के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इसको इवॉल्व किया है सारे इकोसिस्टम को। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रभावी पहल है प्रधानमंत्री जी की तरफ से और अब एक ये मैच्योर गवर्निंग मॉडल्स में मतलब पार्टिसिपेट करने लायक हो गई है।
1: बिल्कुल, और क्योंकि एक सफल लोकतंत्र वही होता है जिसमें सहभागिता होती है, समावेशी वो लोकतंत्र होता है, और समावेशिता के लिए, सहभागिता के लिए जब डिजिटल तरीकों का उपयोग होता है तो वो एक समस्या का समाधान लेकर आता है। जैसा कि आपने MyGov का जिक्र किया तो हम देखते हैं कि 2014 में शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म के बाद अब 3 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत नागरिकों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जन भागीदारी का मंच बन चुका है। तो शंकर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जब एक समावेशी लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा
2: You are tuned into your favorite radio station, Radio Santanam 90.4 FM, keeping you company